0: कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि 19 साल बाद भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता। कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनयिंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था, और इसका हमको ये बहुत अच्छा

0: रिजल्ट मिला है।
1: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
2: I think it's definitely huge for our friends, definitely huge. Felt all the support about the fans. We also got all the support from all the staff behind. And I think definitely today was a day for French badminton and it was a day for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
1: वुमन सिंगल्स में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
3: देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इज सपोर्टिंग मी, आई वांट टू थैंक ऑल द माय फैंस सपोर्टिंग मी, दिस कीप्स मी गोइंग एंड दिस गिव्स मी एनर्जी, सो आई एम सो एक्साइटेड एंड वेरी एंजॉय, आई थिंक इट्स सपोर्ट मी, they're cheering on me, this is my motivation and I there are other people, my team coach, head coach, my family, all fans, trainer, all supporting me, this is my keep going.
1: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
4: And now, our men's doubles world champion 2026. From China, Ling Weiqing and Wong Cheng.
1: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात दी और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
5: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd, that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
1: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेलरू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
2: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
1: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
6: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
1: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। शुरुआत ट्रीसा जॉली और

0: गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी। विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ दो देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत। इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
1: बीइंग इन टू दैट क्लब आई फील लाइक सो हैप्पी, देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी वी हैव इन फ्यूचर, आई फील लाइक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, वी जस्ट नीड्स टू टेक दिस एज अ पॉजिटिव एंड इन अ कॉन्फिडेंस वे, आई फील लाइक दिस ऑल मोमेंट्स एंड गेटिंग दिस मेडल एंड इवन दैट अर्जुन अवार्ड दिस वीक व्हेन दे अनाउंस्ड, आई फील लाइक दैट ऑल्सो गिव अस सम अदर बूस्ट इन दिस टूर्नामेंट।
0: इसी श्रेणी में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया। राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली।
2: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम, वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर।
0: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए।
3: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर 1 इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल, आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ।
0: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली।
3: डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न, एस्पेशली दिस मैच, टफ वन टू डाइजेस्ट एज वेल, बट वील गो बैक एनालाइज एंड या आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, बट आई थिंक डेफिनेटली लॉट टू लर्न एंड लॉन्ग वे टू गो।
0: दूसरी तरफ लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 32 में USA के गैरेट टैन से हारे, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। वुमन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जीयी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी।
4: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. Thoda aur patient rehna tha mere side se. Bahut acha chal raha tha. Game 1, game 2 aur game 3 bhi bahut equal chal raha tha. The last 3 points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
0: Men's doubles mein MR Arjun aur Hariharan Amsa Karunan ki jodi round of 32 ke aage nahi badh saki, lekin chot ke baad wapsi kar रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी।
5: We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game, a lot of the points. हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
0: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका गाड़े एवं आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया। कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले। और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
6: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस। आई वुडंट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीज थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और

0: करीब से महसूस करने आए थे, जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहने माइशा और ताबिया।
1: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूएई में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूएई में हैं, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले ही यूएई को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
0: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
2: I'm from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there. And I've been playing for a year and a half now, representing UAE.
0: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
3: So I'm from Alwar, Rajasthan, and I was born here, so I'm still an Indian passport. Yeah, I frequently come here. All my family's here. There's a lot of Indians in our academy, and but now you'll be seeing a lot more Indian.
0: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: நேயர்களை இன்னும் சில நொடிகளை கேட்கலாம். ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி பிரசன்ஸ் மார்னிங் நியூஸ். Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है. बहुत लोगों को हमें जोड़ना है. हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ. मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं.
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है. कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं.
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
3: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP